श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति पारायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति पारायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति पारायण।

तबा तबाई साहब, एक शायर ने एक हसीना को देखकर कुछ शेर कहे थे जो मैं आपके हजूर में

अरे कोई माने या न माने मेरे दिल की महबूबा ने मेरा तोहफा किया कबूल।

0: अरे गजब भैया रे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, अरे दूध वाला दूध में पानी मिलाए,
1: जिसको

0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते।

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: हैं? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियों, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

0: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग इंजन चला देगा।
1: देखो कहे लोग

0: देखो, देखो तुम्हारे साथ देखो, वो हराम कर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया। ठीक है, मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे ने, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा ए! हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गर...

0: भोले भाले ललुआ भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबा।

0: वाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल के नैया को पार लगा दे। अरे पांडू अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे।
0: ले लो जय जय जय जय जय जय जय हो।